0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
2: कानून वारे वजीर आजम नज़ीर तारड़ वफाकी वजीरन सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त अॼु सदर आसिफ ज़रदारी आईन मुताबिक़ ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इमरजेंसी लॻाई आहे. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दी ऐं इंतिहा पसंदीअ में 200% इज़ाफ़ो थी वियो. घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त सूबे में एहतजाज कंदड़ फौरी तौर पुरअमन नमूने छिड़ विछड़ थी वापसि हलिया वञनि.

छा मुल्क दुश्मनीअ ते ख़ामोश तमाशाई थी वेही रहंदासीं? हिकु जथो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान खे ॿीहर तबाहीअ जे किनारे ते पहुचाइण चाहे थो। पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण वारी हर कोशिश खे नाकाम बणाईंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़ाक़ी काबिना इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त छा ही घड़ी घड़ी पंहिंजी रांदि वरजाइण चाहिनि था? इस्लामाबाद ते ॿीहर चढ़ाईअ जो मनसूबो जोड़ियो वियो हो, ईअं न थींदो ऐं कानून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वफ़ाक़ सां सहकार करण में तयार न आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि न पिया ॻाल्हाइनि। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो वॾो वज़ीर मुल्क में मुआशी बहितरी नथो चाहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इमरजेंसी लागू थियण खां पोइ डॉक्टर मोहम्मद फ़ख़्र आलम केपीके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुक़रर, नोटिफिकेशन जारी। ज़रियनि मूजिब 12 ज़िलनि जा इंतज़ामी मामला धार करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। अॻूणे फाटा जी 8 DI खान लकी मरवत ऐं कुहाट ज़िलनि में कंट्रोल वफ़ाक वटि 12 ज़िलनि लाइ ठहंदा हिकु थींदो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इमरजेंसी गोहर चयो आहे त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इमरजेंसी जो फ़ैसिलो वॾी सियासी ग़लती ऐं गैर जमहूरी क़दम आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो अवाम पंहिंजे हक़नि ख़िलाफ़ अहिड़ा क़दम कॾहिं बि क़बूल न कंदो। संदन मैंडेट क़ानूनी ऐं आइनी हक़ आहे। सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी रद्द करण ऐं वफ़ाक़

सूबे विच में टकराव पैदा करण सां न अमन थींदो ऐं न ई इस्तेहकाम सूबन खे कमज़ोर करे वफ़ाक खे मज़बूत नथो करे सघिजे। मसलनि जो हल ताक़त सां न पर आइन जी बालादस्तीअ में आहे। के पीअ जे अवाम जे हक़नि लाइ हर जमहूरी फोरम ते आवाज़ उथारींदासीं। वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में ख़ैबर पख़्तूनख़्वा पुलिस ऐं हसास इदारनि जूं सिक्योरिटी बाबति ॿ रिपोर्ट्स पेश। रिपोर्ट मूजिबि 1 मार्च 2024 खां 26 सेप्टेम्बर 2026 ताईं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दीअ जे वाक़नि में 195% वाधि थी आहे। 2026 में 170 ड्रोन हमला कया विया। पुलिस ऐं CTD खे जदीद हथियारनि ऐं ऑपरेशन लाइ ज़रूरी सामान जी खोट आहे। अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि ऐं सहूलतकारनि सां सूबाई हुकूमत जी नाकारा पॉलिसी ऐं दहशतगर्दनि लाइ नरमी दहशतगर्दीअ में वाधि जो सबब थी। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में पाक अफ़ग़ान सरहद ते ख़ारिजनि जी मुल्क में दाख़िल थियण वारी कोशिश नाकाम। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज़ जी कार्रवाई में 12 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया, 1 अहलकार शहीद। ISPR मूजिबि पाक अफ़ग़ान सरहद ते फायरिंग जी ॾेवठ में नायब सूबेदार हिदायत अमान शहीद थी वियो। ख़ारिजनि जी मदद करण लाइ अफ़ग़ान तालिबान जे चौकियुनि तां फायरिंग बि कई वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सऊदी राजधानी रियाज़ में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते हुसैन जे हमले जी सख़्त नज़र में मज़म्मत। मारिजी वियल 12 ॼणनि जे वारसनि सां ताज़ियत जो इज़हार। वज़ीर आज़म चयो त शहरनि ऐं अहम हंधनि ते निशानो बणाइण क़बूलनि जोॻो न आहे। आलमी भञकड़ी कंदड़ हमला बंदि कया वञनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सेनेट लाइ डेमोक्रेटिक उमेदवार मोहम्मद अल सैयद खे जहादी करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त मशीगन में कंहिं जहादीअ खे सेनेटर ॾिसण नथो चाहियां। असां ईरान जी एटमी हथियारनि ताईं पहुच वारी कोशिश ख़तम करे छॾी आहे। बाइडन जे दौर जी भेट में हाणे पेट्रोल जूं क़ीमतूं इंतिहाई घटि आहिनि।

0: सिंध जो वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह वफ़द समेत चीन जे गादी वारे शहर बीजिंग पहुची वियो। चीन में पाकिस्तान जे सफ़ीर सैद अली असद गीलानी ऐं संदसि टीम बीजिंग पहुचण ते वॾे वज़ीर जो इस्तक़बाल कयो। तर्जुमान मूजिब वॾो वज़ीर मुराद अली शाह वफ़द सां गॾु सूबे होबी वेंदो, जिते सरकारी मसरूफ़ियतुनि जी शुरूआति सुभाणे सुबुह खां थींदी। हैदराबाद में सिंध तरक्की पसंद पार्टीअ जी मेज़बानी हेठि सिंध मुंहिंजी अमां क़ौमी कॉन्फ्रेंस सिंध जे विरांगे ऐं इंतज़ामी यूनिटनि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुख़ालफ़त। कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे एस टी बी सरबराह डॉक्टर क़ादिर मक्सी जो चवणो हो त सिंध खे विरिहाइण सां मुल्क में बोहरान ख़तम न थींदा। मोहसन नकवीअ खे ॿुधाइण चाहियां थो त अञा सिंध जा 7 करोड़ माण्हू जीअरा आहिनि, हाणे ॿिटी पॉलिसी न हलंदी। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर चयो त मरसूं सिंध न ॾिसूं हिकु सियासी नारो न आहे, ही सिंध जे अवाम जे दिल जो आवाज़ आहे। कुझु तासुब परस्तनि खां सवाइ बाक़ी कराचीअ जो अवाम सिंधनि खां नफ़रत नथो करे। कुझु चैनल्स कूड़ी मुहिम पिया हलाइनि। एन एफ सी अवार्ड में सिंध खे बराबर जो हिसो ॾिनो वञे। इमरान इस्माइल चयो सतह ते मुंतकिल कयो। पीपल्स पार्टीअ खे किरदारु अदा करणो पवंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM Network पर KTN News।
2: Brought to you by Superwhite Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Superwhite Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकर तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
7: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा। धरती आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एंड दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चावरन जो खूबियों एंड कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे एंड चावरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइन एंड झुरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलर

0: हक सच जो आवाज गीत मटियारी 1.6 जो आवाज बदलता रहो बदलता रहो।
1: जिस धरती से लाल शहबाज
2: सिंध की आवाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटी सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: अब आप सुनेंगे जे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त अॼु सदर ज़रदारी आइन मुताबिक़ ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी लॻाई आहे। केपी में दहशतगर्दी में 200% इज़ाफ़ो थी वियो। अहिड़ा क़दम ख़ुशीअ सां न आहिनि खया वेंदा, पर अवाम जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त ज़रूरी आहे। गवर्नर केपी सूबे बाबति वफ़ाक़ सां ख़दशनि जो इज़हार कयो कि आन बोर्ड आणण लाइ सूबे जे राब्तनि में को बि शक न आहे। धरणो को रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जे यू आई सरबराह मौलाना फजल रहमान जो चवणो हो त इन फैसले ख़िलाफ़ हू अवाम सां राब्तो कंदा, पार्लियामेंट जे अंदरि ऐं ॿाहिरि पंहिंजो किरदार अदा कंदा रहंदासीं। वज़ीर आज़म कुझु ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ कयो हो पर बाद में

0: मत पोते हटी भई। वफाकी सरकार खैबर पख्तूनख्वा में फौज मुकर्र करे छदी, नोटिफिकेशन जारी। आईन जे आर्टिकल 245 तहत सूबे में फौज मुकर्र करण जी मंजूरी डिनी वई। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब फौज इंतजामिया जी मदद लाइ मुकर्र हूंदी। शहरनि जी जान माल ऐं सरकारी मिल्कियतुनि जी सिक्योरिटी फौज जी ज़िमेवारी हूंदी। फौज इमरजेंसीअ जे मुदे ताईं सूबे में मुक़ररु रहंदी। गवर्नर के पी जी एच क्यू सां मुशावरत सां नफ़री मुक़ररु कराईंदो। मिल्ट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट सां गॾिजी दस्तनि जो अंग बि तय कयो वेंदो। पाक फौज जी मुक़ररी बाबति हुकमनामो ईंदड़ गज़ेट में शाया थींदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: खुशखबरी। हाँ, अवा के परेशान थियण की का भी जरूरत न आहे। जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
8: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

जवां मेरी जान जहां है ये जिंदगी हसी जिंदगी का है निशान मेरी जान ए जान ए जान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की
1: जीए FM नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराची तरफ़ रवानदा विख विख ते इस्तक़बाल गुलन जी वरखा सखर में ज़ियादती बाद औरत ते तशद्दुद केस दाखिल बजवाबदार गिरफ्तार हेडमास्टर के कार अकेले फिरत सके तालीम के शोबे में महारत रखड़ इदार निज़ाम के बेहतर बनाए सकजे तो तालीम जो वजीफ सरदार अली शाह जहरीलो छड़े की तस्दीक पानी खोट सा मसला वधन

एंटी करप्शन ज़रिए लागापियल स्कूलन ला उमाड़ियूं विधियूं। नए हिदायत मूजिब त शुरूआती मरहले में फील्ड आफिसूं स्कूलन में सीधी रीत जांच करण, नोटिस जारी करण, जाती हाजिरी लाइ तलब करण या रिकॉर्ड घुराइण जी मजाज न हूंदियूं। जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति वधीक कार्रवाई डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सिंध जे हिदायत मूजिब कई वेंदी। अहिड़ी तरह स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि में स्कूल जो नालो, इल्ज़ाम जा तफ़सील, लाॻापियल माली साल, रक़म ऐं मौजूदा दस्तावेज़ी सबूत शामिल करण लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां एंटी करप्शन अख़्तियारनि जो चवण आहे त नए तरीक़ेकार जो मक़सदु स्कूलनि जो इंतज़ामी मामलनि ऐं जाइज़ ख़र्चनि खे मुतासिर करण खां सवाइ स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि जी गॾियल ऐं असराइती जांच पड़ताल खे यकीनी बनाइणो आहे। सिंध हुकूमत सिंध ऐं कराची यूनिवर्सिटियुनि सां लाॻापियल लॉ कॉलेज लाइ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क़ाइमु कया आहिनि। उन हवाले सां कानून खाते जे अख़्तियारनि पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि कराची यूनिवर्सिटीअ सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो चीफ रिटायर्ड शाह नवाज़ तारिक़ खे मुक़ररु कयो वियो आहे। जॾहिं त इश्तियाक़ अहमद मेमण, अरुण प्रशाद, अरशद शर, इमरान मिठियाणी, हाकिम शेख ऐं फराज़ इम्तियाज़ शेख खे बोर्ड जा नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो चेयरमैन बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़ खे मुक़ररु कयो वियो। जॾहिं त इरफान बुगियो, हाशिम लिगारी, अल्ताफ़ जुणेजो, अली रज़ा चन्ना, वसीम शाह ऐं राजा जवाज़ साहड़ खे नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह मखदूम तालिबुल मौला लॉ कॉलेज हाला जे प्रिंसिपल मखदूम मोहम्मद ज़मा खे सिंध यूनिवर्सिटीअ जे क़ाइम थियल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जे सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब मेंबरनि ऐं चेयरमैननि जी मुक़ररीअ वारो मुदो 3 साल हूंदो। सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जे लताड़ ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराचीअ तरफ़ रवानो। हैदराबाद खां कराची ॾांहुं निकतल प्यादल लॉन्ग मार्च काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुची वियो। हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ जे मज़ार ते हाज़िरी भरे दुआऊं घुरियूं वयूं। काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुतो त सियासी, समाजी ऐं कोपरस धुरियुनि तरफ़ां काफ़िले जी शानदार आजियां कंदे गुलनि जी वर्खा कई वई। उन मौके ते लॉन्ग मार्च जो शामिल अॻवाणनि ऐं शिरकत कंदड़नि खे सिंधी सकावत जी अलामत अजरकूं, लोंगियूं ऐं गुलनि जा हार पराए भलीकार कयो वियो। काफ़िले जे अॻवाणनि चेयरमैन ज़बीउल्लाह मस्तोई, फ़ख्र ज़मा, हुसैन बख्श चांडियो, सिकील दो चांडियो ऐं ॿियनि चयो त सिंध में मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो पुरमन एहतजाज जारी आहे, पर संदनि ख़दशनि ऐं मुतालबनि ते लाॻापियल इख़्तियारनि तरफ़ां घुरिबल ध्यानु न पियो ॾिनो वञे। हुननि इल्ज़ाम हयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना करप्शन उमेदवारनि जो हक़ तलफ़ी थी रही आहे। हुननि मुतालबो कयो त मुक़ररीन ऐं मेरिट बाबति साम्हूं आयल शिकायतुनि जी शफ़ाफ़ जांच कराए हक़दार उमेदवारनि खे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। अॻवाणनि वधीक चयो त मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शुरू कयल तहरीक खे हाणे प्यादल लॉन्ग मार्च जी सूरत ॾिनी वई आहे, जेको मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि मां कराची पहुचंदो। हिननि ऐलान कयो त 14 अक्टूबर ते कराची में वज़ीर आला हाउस आॾो पुरमन एहतजाज करे मेरिट जी बहालीअ जे लाइ पंहिंजा मुतालबा पेश कया वेंदा। हुननि ख़बरदार कयो त जेकॾहिं मुतालबनि ते ध्यानु न ॾिनो वियो त मेरिट जी बहालीअ लाइ अमली क़दम न खया विया त एहतजाज जो दायरो वधीक वधायो वेंदो। सखर में औरत सां ज़्यादतीअ बाद कारे-कारीअ जो इल्ज़ाम, तशद्दुद ऐं क़त्ल जी कोशिश, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। साइट एरिया थाणे जे हदि गुलशन इक़बाल में औरत सां मुबैना ज़्यादती करण बाद मथस कारे इल्ज़ाम लॻाए तशद्दुद ऐं क़त्ल करण जी कोशिश वारे वाक़िए जो SSP सखर अहमद चौधरी नोटिस वठंदे मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ फौरी कानूनी कार्रवाई जो हुकुम जारी कयो आहे। पधराईअ मुताबिक़ SSP जे हुकमनि ते साइट एरिया थाणे जे SHO कार्रवाई कई। मुलविस ॿिनि जवाबदारनि गुलाम शेख खे गिरफ़्तार करे गिरफ़्तार जवाबदारनि खां जांच जारी आहे। ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ पिण कार्रवायूं कयूं पियूं वञनि। वाक़िए जो साइट वधीक कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। मुतासिर औरत खे वधीक कानूनी कार्रवाई ऐं तहफ़ फ़राहम करण जे लाइ वुमेन प्रोटेक्शन सेल मुंतकिल कयो वियो आहे, जिथे ज़रूरी कानूनी कार्रवाईअ बाद खेसि अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हुकूमत सूबे जे 1133 नवकारी स्कूलनि जे इंतज़ामनि ऐं तालीमी मयार में बहितरी जे लाइ एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन सां भाईवारी करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। उन हवाले सां तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में सरकारी स्कूलनि जे इंतज़ामनि ऐं निजी शोबे जी शमूलियत, भाईवारी जे तरीक़ेकार, स्कूलनि जी कारकर्दगी, तालीमी नतीजनि ऐं जवाबदेही जे निज़ाम समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि मां 838 स्कूल सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऐं 295 स्कूल सिलेक्ट प्रोग्राम जा आहिनि। आलमी बैंक ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक जे सहकार सां तामीर थियल उन्हनि स्कूलनि में जदीद तालीमी सहूलियतूं फराहम कयूं वयूं आहिनि। उहे स्कूल सिंध जे 19 ज़िलनि में जदीद तालीमी कैंपस तौर क़ाइम कया पिया वञनि। इजलास में तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह चयो त पब्लिक सेक्टर सरकार अकेले ज़रे

जे शोबे जो समूरो बार नथी खणी सघे। मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर ताज़ो थियल इजलास में अपग्रेड कयल स्कूलनि लाइ शफ़ाफ़ ऐं पायदार एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन्स फ्रेमवर्क खे हतमी शिकिल ॾियण जी हिदायत कई आहे। हुन जो एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन्स खे हर मुमकिन सहकार फराहम करण जे इम्काननि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। तंहिं हूंदे बि तालीम जे मयार ते का बि मसलहत क़बूल न कई वेंदी। इजलास में ॿुधायो वियो त 1103 स्कूलनि जी मरहलेवार हवालगीअ जो अमल डिसम्बर 2026 खां डिसम्बर 2027 ते मुकमल कयो वेंदो। दस्तियाब सरकारी मनसूबाबंदीअ मूजिबि 552 स्कूल डिसम्बर 2026, वधीक 801 स्कूल मार्च 2027 ऐं बाक़ी स्कूल डिसम्बर 2027 ते मुकमल करण जो हदफ़ मुक़ररु कयो वियो आहे। सिंध जी रिथाबंदीअ वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त सिंध हुकूमत नेशनल SDGs इन्वेस्टमेंट फेयर में 562 मिलियन डॉलर जा 7 सीड़पकारी मनसूबा पेश कया आहिनि, जिन जो मक़सद अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट ऐं बुनियादी सहूलियतुनि जे शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा पैदा करणु आहे। सिंध में पाणी फराहमीअ जे चैलेंजनि खे मुंझण, आबी वसीलनि जे बहितर इंतज़ाम ऐं तरक़ियाती मनसूबनि खे निजी शोबे ऐं तरक़ियाती भाईवारनि जी सीड़पकारी वॾी अहमियत रखे थी। काल्ह तक़रीब खे ख़िताब कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो त कराचीअ खे कींझर ढंढ मां 100 खां 150 किलोमीटर परे खां पाणी फराहम कयो वेंदो आहे, जॾहिं त सूबे जा ॿिया वॾा शहर सिंधु नदीअ जे ॿिन्ही पासनि ते आबाद आहिनि। सिंध जे पाणीअ जी ज़रूरतुनि जो वॾो इनसार सिंधु नदीअ ते आहे। सिंधु नदीअ में पाणीअ जी खोट सां सूबे में पाणीअ जी फराहमीअ जा मसला वधी वेंदा आहिनि। हुन चयो त सिंध में ट्यूबवेलनि जी तादाद 1 लख खां घटि आहे, जॾहिं त पंजाब में 14 लख ट्यूबवेल मौजूदु आहिनि। हुन सिंधु नदीअ में गदिले पाणीअ जी आमद ऐं कोचड़ी बेरार ते पाणीअ में लूणियाठ TDS जी वधंदड़ सतह ते पिण गणतीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त पाणी जे मयार ऐं फराहमीअ बाबति मसलनि ते असराइता क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त पायदार तरक़ीअ जे मक़सदनि जी हासिलात लाइ सिर्फ़ सरकारी बजट ते इन असार काफ़ी नाहे। निजी सीड़पकारी, तरक़ियाती फाइनांसिंग, मौसमियाती फाइनांस ऐं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे असराइते नमूने कम में आणणो पवंदो।

0: तलवार दौरान उथारियल सवालनि ते कहिड़ी ऐं छा लागाज़े ऐं इत्मिनान बख़्श जवाब ॾियण में कामयाब थियनि था। हीउ हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है।

डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन, अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतियाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 बजे का शाम मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, 06244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सघंदा सिंध ऐं कराची वरस्तिन जे लॉ कॉलेजेस लाइ ब बोर्ड कायम नोटिफिकेशन जारी सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराची तरफ़ रवानदव विख विख ते इस्तक़बाल गुलन जी वर्खा सखर में ज़ियाती बाद औरत ते तशद्दुद केस दाखिल बजवाबदार गिरफ़्तार एंटी करप्शन खाते जे अख्तियारन तालीम खाते जी सिफारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबत शिकायतुन ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो हेड मास्टरन खे सिधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो सिंध जा 1133 नवा ऐं अपग्रेड सरकारी स्कूल एनजीओस खे ॾियण जो फ़ैसिलो सरकार अकेले सिर तालीम जे शोबे जो समूरो भार नथो ई खणी सघे मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो तालीम जो वज़ीर सरदार अली शाह कोटड़ी बैराज ते पाणी ज़हरीलो थियण जी तस्दीक पाणी खोट सां मसला वधनि था जाम खान शोरो स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहानी निज़ाम नौजवाननि जा ख़दशा ऐं हुकूमत

जिम्मेवारी। एंटी करप्शन खाते जे इख्तियारनि तालीम खाते जी सिफारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो। नए तरीक़ेकार तहत एंटी करप्शन जी जांच टीमुनि खे शुरूआती मरहले में स्कूलनि जे सरबराहनि हेड मास्टरनि खे सिधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ मुख़्तलिफ़ सरकारी स्कूलनि जे हेड मास्टरनि खे एंटी करप्शन खाते पारां हिरासा करण वारनि शिकायतुनि खां पोइ तालीम खाते जे सिफारिश ते एंटी करप्शन इख़्तियारनि स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति ईंदड़ शिकायतुनि जी जांच जे हवाले सां नओं तरीक़ेकार जोड़ियो आहे। एंटी करप्शन खाते पारां जारी कयल सर्क्यूलर मूजिबि शुरूआती मरहले में स्कूल सरबराहनि खे सिधो सओं तलब करण खां रोकियो वियो आहे, जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट में हेरा फेरी, बेज़ाब्तगियुनि ऐं सरकारी फंडनि जे ग़लति इस्तेमाल बाबति शिकायतूं ज़िले सतह जे सर्कल आफ़ीसरनि या ज़ोनल जे डिप्टी सेक्टरनि ऐं डायरेक्टरनि बजाए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ज़रिए लाॻापियल स्कूलनि ॾांहुं उमाणियूं वेंदियूं। नए हिदायत मूजिब त शुरूआती मरहले में फील्ड आफ़ीसूं स्कूलनि में सिधी रीति जांच करणु, नोटिस जारी करणु, ज़ाती हाज़िरीअ लाइ तलब करणु या रिकॉर्ड घुराइण जी मजाज़ न हूंदियूं। जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति वधीक कार्रवाई डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सिंध जे हिदायत मूजिब कई वेंदी। अहिड़ी तरह स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि में स्कूल जो नालो, इल्ज़ाम जा तफ़सील, लाॻापियल माली साल, रक़म ऐं मौजूदा दस्तावेज़ी सबूत शामिल करणु लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां एंटी करप्शन अख़्तियारनि जो चवणु आहे त नए तरीक़ेकार जो मक़सदु स्कूलनि जो इंतज़ामी मामलनि ऐं जाइज़ ख़र्चनि खे मुतासिर करण खां सवाइ स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि जी गॾियल ऐं असराइती जांच पड़ताल खे यकीनी बणाइणो आहे। सिंध हुकूमत सिंध ऐं कराची यूनिवर्सिटियुनि सां लाॻापियल लॉ कॉलेज लाइ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क़ाइमु कया आहिनि। उन हवाले सां कानून खाते जे अख़्तियारनि पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब कराची यूनिवर्सिटीअ सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज़ तारिक खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जॾहिं त इश्तियाक अहमद मेमण, अरुण प्रसाद, अरशद शर, इमरान मिठियाणी, हाकिम शेख ऐं फराज़ इम्तियाज़ शेख खे बोर्ड जा नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो चेयरमैन बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़ खे मुक़ररु कयो वियो, जॾहिं त इरफान बुगियो, हाशिम लिगारी, अल्ताफ़ जुणेजो, अली रज़ा चन्ना, वसीम शाह ऐं राजा जवाज़ साहड़ खे नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह मखदूम तालिबुल मौला लॉ कॉलेज हाला जे प्रिंसिपल मखदूम मोहम्मद ज़मा खे सिंध यूनिवर्सिटीअ जे क़ाइमु थियल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जे सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब मेंबरनि ऐं चेयरमैन जी मुक़ररीअ वारो मुदो 3 साल हूंदो। सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जे लताड़ ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटीअ जो लॉन्ग मार्च कराचीअ तरफ़ रवां दवा। हैदराबाद खां कराची ॾांहुं निकतल प्यादल लॉन्ग मार्च काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुची वियो। हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ जे मज़ार ते हाज़िरी भरे दुआऊं घुरियूं वयूं। काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुतो त सियासी, समाजी ऐं कोपरस्त धुरियुनि तरफ़ां काफ़िले जी शानदार आजियां कंदे गुलनि जी वर्खा कई वई। उन मौके ते लॉन्ग मार्च जो शामिल अॻवाणनि ऐं शिरकत कंदड़नि खे सिंधी सकावत जी अलामत अजरकूं, लोंगियूं ऐं गुलनि जा हार पराए भलीकार कयो वियो। काफ़िले जे अॻवाणनि चेयरमैन मस्तोई लदो चांडियो ऐं ॿियनि जा जारी आहे न पियो पूरो लंदड़ उमेद मुक़ररु शिकायतदार उमेदवार कमु कयो वञे त मेरिट जी कराची हिननि ऐलान ते ध्यानु न लाइ दम न खयां विया त एहतिजाज त आहे। सखर में औरत सां ज़्यादे बाद कारे कारी शदुद ऐं क़त्ल जी कोशिश, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। साइट एरिया थाणे जद गुलशन इक़बाल में औरत सां मुबैना ज़्यादती करण बाद मथस कारे इल्ज़ाम लॻाए कोशिश वारे वाक़े जो SSP सखर अहमद चौधरी जवाबदार ख़िलाफ़ मुताबिक़ इहा थाणे के में मुलविस ॿिनि अली मुराद चाचर खे गिरफ़्तार करे वई आहे। ॿियनि जवाबदारी जे लाइ पिण कारवाई वाक़िए जो करे वधीक कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। मुतासिर औरत खे वधीक तकिल कयो वियो आहे। अदालत में नवन ऐं सरकारी तालीमी मयार मैनेजमेंट ऑर्गन जो फैसलो करे वरितो आहे। हवाले सां तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत ऐं जवाबदेही जे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते तफ़ियो इजलास खे ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि मां 838 स्कूल प्रोजेक्ट ऐं 99 स्कूल सिलेक्ट आहिनि। आलमी बैंक बैंक के सहकार सां तामीर थियल उन्हनि स्कूलनि में जदीद तालीमी कैंप वञनि। इजलास वारे वज़ीर शाह चयो त पब्लिक सेक्टर सरकार अकेले सिर तालीम जे शोबे जो सूबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो। सिंध जे थियल इजलास में अपग्रेड कयल स्कूलनि लाइ शफ़ाफ़ ऐं पाइद मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन फ्रेमवर्क खे हतमी शिकिल ॾियण जी हिदायत कई आहे। हुन जो एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन खे हर मुमकिन सहकार फराहम करण जे इम्काननि जो जाइज़ो वरितो वेंदो।
तंहिं हूंदे बि तालीम जे मयार ते का बि मसलहत क़बूल न कई वेंदी। इजलास में ॿुधायो वियो त 1100 स्कूलनि जे मरहले

वार हवालगी जो अमल दिसंबर 2026 खां दिसंबर 2027 ते मुकमल कयो वेंदो। दस्तियाब सरकारी मनसूबाबंदी मूजिब 552 स्कूल दिसंबर 2026, 801 स्कूल मार्च 2027 ऐं बाक़ी स्कूल दिसंबर 2027 करार कयो वियो आहे। सिंध जी रिथाबंदीअ वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त सिंधु एस डी जीज़ इन्वेस्ट 62 मिलियन कया आहिनि। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट जे बहितर इंतज़ाम मनसूबे ऐं तरक़ी ख़िताब कंदे मीडिया खे परे जॾहिं सिंधु नदीअ जी आबाद आहिनि हिन सार 1,00,000 खां घटि आहे, जॾहिं त सिंधु नदीअ में गदड़ी बेरार ते पाणीअ में लूणी 8 TDS जी वधंदड़ सतह ते पिण गणतीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त पाणी जे मयार ऐं फराहमीअ बाबति मसलनि ते असराइता क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त पायदार तरक़ीअ जे मक़सदनि जी हासिलात लाइ सिर्फ़ सरकारी बजट ते इनहसार काफ़ी नाहे। निजी सीड़पकारी, तरक़ियाती फाइनांसिंग, मौसमियाती फाइनांस ऐं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे असराइते नमूने कम में आणणो पवंदो।

0: हकीकतूं कीअं सां हिक तरफ़ ॿिए तरफ़ कंहिं बि इदारे या फासिब ज़रूरी आहे जे हालत ऐं गैर जानबदार जांच इम्तिहानी अमल जे तरीक़ेकार बाबति वाज़े मालूमात ऐं शिकायतुनि जे अदाले जे लाइ असराइतो निज़ाम अहमियत रखे थो। जेकर कंहिं बि क़िस्म जुमे वारनि ख़िलाफ़ कानून ऐं लाॻापियल ज़ाब्तनि मूजिबि कारवाई थियणु घुर्जे। साॻिए वक़्ति जांच जा नतीजा वाज़े अंदाज़ में साम्हूं आइण सां मिली सघे थी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहानी निज़ाम बाबति उथारियल ख़दशनि जो हल इल्ज़ाम तराशी या हिक ॿिए जे मौक़िफ़ खे नज़र अंदाज़ करण बदिरां हक़ीक़तुनि जी तस्दीक शफ़ाफ़ जांच ऐं बाज़ाबता ॻाल्हियुनि में आहे। शागिर्दनि जे मुतालबनि जो जाइज़ो वठणु, लाॻापियल इदारनि जो मौक़िफ़ साम्हूं आणण ऐं जांच जे नतीजनि मूजिबि कानूनी क़दम खणण सां ई मामलनि खे वाज़े रुख ॾेई सघिजे थो। हाणे अहम उहा ॻाल्हि आहे त प्यादल मार्च दौरान उथारियल सवालनि ते कहिड़ी अॻभराई थिए थी ऐं छा लाॻापियल इख़्तियारनि नौजवाननि जे ख़दशनि जे वाज़े ऐं इत्मिनान बख़्श जवाब ॾियण में कामयाब थियनि था। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़। ॿुधंदा रहो, ॿुधंदा रहो।
2: खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारीअ में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज

मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।